जिथे भी कोई रब तू भुलिया इंसान। गुरु नानक बाबा नू नजर आया सतगुरु उथे आप पुजे। संसार दी रीति है भई महापुरश वली पीर पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है, पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगां कोल जांदे रहन। बाबा काशी गए, बनारस गए, हरिद्वार गए, गया जी गए। क्यों गए? भई लोगां दा तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उथे अपने विचार सुनांदे सन, लोगां नूं सीधे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक, क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी, ते लागे अचल बटाला है। ओ सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़, शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया, कहण लगे मर्दानिया चल। गरीब नवाज पातशाह सत बचन, भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने,

लगी बरसन लक्ष्मी। बाबे दा आउणा सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नवाज पातशाह बैठे सन। लगी बरसन

अपनी शक्ति नाल ओ जेड़े लोटे विच लोग पैसे पा रहे सन ओ लुका दिता। भाई साहब भाई गुरदास ने बड़ी प्यारी बात कही। भाई साहब कहंदे ने भगतियां गई भगत भले, भगतियां गई भगत भोले, जिस वेले भगतियां ने तकिया भी जिले विच लोग माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया, ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतियां नू ओ भगत पौनी भुल गई, ना उताल रहा ना उराग रहा।

खादी खुण सुजुगी सिरा। जिस वेले बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है,

मेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करां। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह

पहले पैरे आपने उठ के तीजे पैरे उठ के तुर पैण, क्योंकि पहले दो पैर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहिंदे, ते जदों तीजा पैर हुंदा

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अद्धे रस्ते

गुरु पातशाह इथो हुण पिट हो रही है, माफी दे दे। ते फिर व्यासा वल तुर पे, गागर जल्दी भरी सिर ते चुकिया। अज एडा मीह पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं।

जिसनु गुरु अंगद दे पातशाह दे चरणा विच थां मिल जावे ओ निथावांदा है ओ तां थां वाला बन जांदा है। सत संगत बोलो श्री आज जदों चली दा लफ्ज आखिया ते ओ जुलाई सचमुच चली हो गई। कपड़े फाड़न लगी आप तां चले गए जल्दी सेवा जदों कीती अज 12 साल पूरे हो गए सेवा। अमृत वेला जदों होया दीवान सजिया गुरु अंगद देव पातशाह ने आख्या बुलाओ बुलाओ बाबा अमरदास जी। जदों आए गुरु अंगद देव पातशाह सिंघासन तो खड़ो गए। अपने सिंघासन ते गुरु अमरदास जी नु बिठाया चरना ते विच पांच पैसे ते नारियल रख के मत्था टेकिया। सात संगत बोलो श्री आख्या अज तुहाडी सेवा संपूर्ण होई है क्योंकि इस सेवा दे सदके ही तुसी सानू जित लिया। इस सेवा दे बल ते ही तुसी सानू रिझा लिया ते फिर किड्डे वर दिते। आख्या कौन कहिंदा है कि गुरु अमरदास निथावा है ना भाई गुरु अंगद देव पातशाह ने वर दिते गुरु अमरदास निमाणिया दा मान गुरु अमरदास नितानिया दा तान गुरु अमरदास नियोटिया दी ओट गुरु अमरदास नियासरिया दा आसरा गुरु अमरदास निलजिया दी लज गुरु अमरदास निपत्तिया दी पद गुरु अमरदास नितरिया दी तार गुरु अंगद देव पातशाह वर दिती जा रहे हन। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह चुक चुक जा रहे हैं। सात संगत बोलो श्री क्योंकि जितना आ फल लगता है टैणी नूं ओ टैणी उतनी चुकदी चली जाती है। एडी सेवा करके 12 साल सेवा कीती गुरु अमरदास जी ने ते फिर की होए गुरु नानक दा रूप बन गए। सात संगत बोलो

जे हुक्म होया एक रहबर नू एक पैगंबर नू अंगयारियां ते चलन दा सामने अंगारे वेखे घबरा उठिया पुकार कीती अपने खुदा दे चरणा विच हे परमात्मा ए अंगारे इना ते मैं चलांगा ते मैं सड़ जावांगा ए फुल बन जान। प्रभु दा भगत सी अंदर जेड़ी ए लालसा उत्पन्न होई परमेश्वर ने ओ दी भावना पूरी कीती पौतक वरत्या ओ अंगारे फुल बन गए। ऐथे ही बस नहीं खंबा तपा के लाल कीता है अग नाल हुक्म होया हरनाकश दा प्रहलाद नू इस खंबे नू गलवकड़ी पा मैं वेखदा तेरा परमात्मा तेरा परमेश्वर तेरा राम तैनू किवें बचाण वास्ते आउंदा है। जदों प्रहलाद अगे वध्या खंबे नू गलवकड़ी पाण वास्ते उस खंबे दे विचों सेक आया क्योंकि अग नाल तपा के लाल कीता होया सी। मन थोड़ा जा डोल गया भगत दा अंदरों आवाज आई हे भगवान जे मैं इस खंबे नू गलवकड़ी च लिया ते मैं ते सड़ जावांगा। कहंदे ने ऐसी एक दंद कथा सुनन विच आउंदी है कि जानी जला के वेखिया प्रहलाद ने उस खंबे दे उत्ते ता की वेखदा है कि एक कीड़ी तुरी आउंदी है। एकदम ख्याल बदल गया भगत दा कि ए कीड़ी निक्की जही इस खंबे ते उत्ते तुरी आउंदी है ते ए नहीं सड़ रही मैं किवें सड़ जावांगा। कहंदे ने गल वकड़ी पा ले पर एक बारी जरूर मन डोल गया।

सदियां तक बल्कि जुगा जुगांतरा तक बुलंद रहंदी है और उस सच दी रोशनी दे विच अनेकां ही राही उन्हां नूं मार्गदर्शन प्राप्त हुंदा है। तो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी अकाल पुरख वाहिगुरु दे भाणे विच किवें रहना है,

अकाल मूर्त अजूनी सहभंग और प्रसाद जब आप सच युगात सच है भी सच नानक कोशी भी सच चक्र के नर वर्ण जात हर पात नहिंजे रूप रंग अरी पीप भूकान सत्य है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित तूज के हिंजय भूत इंद्र इंद्राण शाहु शाहान गणिजय फिर भ्रमण में ही सुर नारा सुर नीत नीत बंटन।

भगतवाचातेरा मिर्दे अर्पत देवदारया उद्मिन नाई कोई बिनो भोय सहारया।

आप गवाया हाँ सदके तिन्ना गुर सिखा करण उदासी अंदर माया हाँ सदके तिन्ना गुर सिखा गुरमत गुर

थारा केवन के नहीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा कि नहीं ग्रह तजवन खंड पाया कि नहीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती।

बात गुमान जैसे रैन परोहने उठ चल से प्रभात क्या तू रत्ता ग्रस्त स्यों ये सब फुलां की बागात ये फुलां दी बागीची है संसार ये सदा नहीं खिड़े रहने भाई ये सदा नहीं खिड़े रहने ये डिग पैने हन क्योंकि निरंकार दी मर्यादा है आमन जान एक खेल बनाया जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जेड़ा संसार ते आया पहला मरना लिखा के आया के कदों मरना है इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हन कि रंग मान ले प्यारिया जा जोबन निहुला जितने तक तेरे ते जोबन है बल है तेरे शरीर विच सेवा सिमरन परपकार करके कुछ नाम दिया कड़िया पले बन ले बचपन खेड़ा विच बीत गया जवानी कर दे समान कठे करन विच बीत गई ते बुढ़ेपा बुढ़ेपे विच क्या तेनू चेते आवेगा बुढ़ेपे विच भी ओयो कुछ याद रहंदा जो

अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच दर्ज है।

अंतर जोत आराम प्रगासा गुरमुख बिरले जाने। कहानी कहते हैं बीत चुकी घटना या जेड़ी घटना घट रही है उसनू कोई सुनावे कोई कहे अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनू भी सुनते हैं पर ए ते परमेश्वर दे नाम दी कहानी सच्ची कहानी और भगत कबीर साहब कह रहे हैं अंतर जोत राम प्रगासा जिस वेले इंसान दे अंदर नाम दा प्रकाश हो जाए ता फिर ओ इस कहानी नू जान लेंदा है कि परमात्मा दे मेल दी अवस्था की है पर एक गल है गुरमुख विरले जानी कोई विरला गुरमुख इस कहानी नू जान

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नास हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देन वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी जो

तृष्णा रूपी जल सूख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है ये सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती है। हर इंसान भज रहा, जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहा है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख बहुती माया विच भी नहीं।

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाणगे। ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश कदी भी तुहानू तंग नहीं करनगे। पर इन्हां गल्लां दी सोझी हुंदी है जदों गुरु अते गुरु दी बाणी दा सानू ज्ञान होवे। गुरु की है? गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश दिंदा है। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमांदे हैं।

कितना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे तावी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे हुंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा हुंदा है गुस्से दे नाल ओदे मन नूं चैन नहीं हुंदा। रोशनी विच इंसान बैठा हो अंधेरे विच हुंदा है अंधेरा केड़ा अज्ञान दा। अज्ञान की है अज्ञान ए है कि दूसरे दा हक मैं खावा अपने सुख वास्ते दूसरे दा हक खाना दूसरे नूं दुख देना ए है अज्ञान। ते ज्ञान की है ज्ञान ए है कि भाई सारे विच परमेश्वर है सारे विच खुदा है वाहेगुरु है जे सारे विच ओ है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोझी

हजार सूरज होवे सौ चंद्रमा होवे पर जे गुरु नहीं मिलिया इस चाननी दा क्या फायदा जे मन दे विच ज्ञान नहीं मन विच अज्ञान है।

पानी टिकिया रहेगा, जे पानी नो धरती ते डोलो पानी खिलर जाएगा। इसे तरह सहिब जी फरमांदे हन, कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे। जिवें पानी घड़े विच टिक जांदा है, इसे तरह मन गुरु दे ज्ञान दे नाल टिक जांदा है, और ज्ञान गुरु तो बगैर नहीं होंदा।

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जेड़े गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नूं जान लैंदे ने कि सारे विच

ओने दोनों पेटावा कठिया कर ली, घर आके अद्धी अद्धी तेरी कर ली। होता कहन लगा ए तेरे वास्ते ठीक नहीं, जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन दे। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती, पावे उन्हें माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप इकट्ठे से इस कार्य के असी बराबर हिस्सा करना, और पैसे तू झगड़ा हो गए और झगड़ा होंदा भी। अक्सर देखते हैं देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं, इस वास्ते नहीं कि उन्हां नूं कोई सेवा दा चा है। बहुत घट हुंदे हन सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं हुंदी, सेवा ते मन हुंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होवेगा, पानी विच रह के पानी दे विच रहण वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनु भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रहेगा, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच पटकदा पटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा, मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा और इस गल दा बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दित्ता है। ने भगत पर माया विच आ गई और माया ने दोनों नू भगती दे थां तों थले सुट दिता। समा आया दोनों दी मौत हुई, वड्डा मस्ताथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नूं गुरबाणी विच भी साहिब जी बयान करदे हन, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कार ऊपर कड निस्तारे, गज पत पार उतारे। अनेकां शब्दां विच इस साखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने, इह जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंबदे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले, और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया, और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहलां ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा,
ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਤਗੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕੁਝ ਪਿਛਾ ਆਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਤੰਦੂਏ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ

विष्णु भगवान ने इन्हां दे बंधन कटे, तंदुए नूं भी मुक्त कीता, इस हाथी नूं भी मुक्त कीता, ते दोनों भरा भोता ते ब्रह्मा। पूरे गुरु की प्राप्ति नहीं सी, भगती करते सन, पर माया का लालच मन विच हटिया।

नानक के शरीर के दर्शन करते उनके चरणों की छोह प्राप्त होती, इतने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

ध्यान रखा है, गुरु सूरज के माफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं, ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।

इसमें प्रथाए नौवे पातशाह ने विकथन किया, हर की गत नाही कौ जाने, जोगी जति तपी पछहारी अर बहलोक सियाने, तू बेअंत को विरला जाने, को विरला जाने, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा, तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया, तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सभी, मुन इंद्र महाशिव जो करी, तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा,

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहिंदे ने जो कुछ नजर आउंदा होवे, मनुख दी अंदर दी रहनी जिस वेले बाहर आ जांदी है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख दी रहनी सुधार देंदे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा है, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल दिवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई, चाल ठीक हो गई। और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तो बंदा पछाणिया जांदा है। पग किहो जी बनदा है, भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं। और यही वजह है कि लोग तां कहंदे ने पग बननी, लेकिन गुरु का सिख कहंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि उन्हूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगता है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगता है, चाल तो पता लगता है इनू तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलन दा भी पता लगता है, ते गुफ्तार तो जबान तो बोलन तो भी पता लगता है इसके अंदर की है। जो जीए होए सो उगवे, जबान तो उ निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंह बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंह प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंह गाला निकलेंगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदो बदलते जो गुरु के मार्ग पै जाए।

पहला मार्ग पहला रास्ता पहली जुगत। सतगुरु कृपा करदे ने साहिब धन गुरु अर्जन पातशाह साहिब कहिंदे ने प्यारे आ कदी मच्छी नू देख लै उदा पानी नाल किन्ना प्यार है उदा जीवन ही पानी है। एक खिन भी ना धीरे एक पल एक क्षण भी ओ नहीं रह सकती दे जे पानी विचों कटदे हो ते भाई उन्हें मर जाने। जे तेरा प्यार इदां दा हो जाए गुरु नाल इदां दा सुने किते तू गुरु नाल कर लवे ते तेरे जीवन विच पलटा ना आ जाए। शायद कहिंदे नहीं

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत साहब सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै पपीए नू वेख लै जेड़ा स्वाती बूंद दे पिछे पपी पपी प्या करदा साहब बाणी विच कहिंदे ने

कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धर्मगुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गियां नूं सतगुर ने अपने हिरदे नाल ला लिया, अहंकारियां नूं पिठ दे दित्ती मुख नहीं लाया। जिन्हां नाम जपिया सिमरन कीता, भावें कोई वड्डा है भावें कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नूं, नाम जपण वालियां नूं, सेवा करन वालियां नूं मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लैंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजै शरण भरी जाए, हंकार ना कर प्यारिया, अभिमान ना कर, गुरु दे चरणां विच उहदी शरण विच आ जाए।

गुरु नानक दी मोर लाके धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रसना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रसना तो कृपा करदे ने ते आंदे

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां जो

कतहु सुचे तुह के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहिब गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्ताद विच फरमान दी।

कऊ जछ गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहूं भय किन्नर पिसाच कहूं प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कऊ हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब होय के पुराण को पढ़त मत कतहूं कुरान को निदान जान लेत हो काऊ बेदरीत काऊ ता स्यों बपरीत काऊ त्रिगुण अतीत काऊ सर

मत देत हो। कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।

सूरज में सस में नब में जय हेरो तहां चित लाए तहाई। पावक में अर पवन हूं मैं पृथ्वी तल में सुकहा न जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे।

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नू हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ महला पहला विच कृपा करदे ने।

मैं क्या मांगू कि चिथिर ना रहाई। तू दाता है, तेरे कोल सारिया दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है, पर मैं मंगा की हे मालिक मैनू ओ दात दे।

नाम मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने, जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र

ब्रह्मा दिया पत्तियां विच वसदा है। ब्रह्म पाती विष्णु डारी, विष्णु भगवान डालियां च वसदा है। फूल शंकर दे ओ भोलेनाथ शंकर, फूलां विच वसदा है।

दरबार विच बैठे साई मिया मीर आया, बेनती कीती गरीब निवाज, आपने जो ए बाणी रची है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। आपने बाणी रची है, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पाणी विच रवे, फिर भी उसके हुक्म विच रवे। ऐसा कौन है, कृपा करो। सिर्फ ए बाणी मुझ बानी ही उचारी है कि इसके उपर कोई अमल करन वाला भी है। ता गुरु अर्जन दे पातशाह कहन लगे, साई मियां मीर समा आवेगा, ए जो अखर असी लिखे हन, जो अखर उचारे हन, इना ते अमल भी करके दसांगे। ते फिर समा आ बने जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते, ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या, इस तों सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है, ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वर सब तों अच्छा है। उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज नूं कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां। साहब जी ने क्या अच्छा, जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नूं जाके आखिया कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है, तां चंदू दीवान जिस नूं अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां, बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो, मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी, ए तुसी चंगा नहीं कीता। गुरु घर वाल जदों कुबोल बोले ते ए गल संगत नूं पता लग गई, तां दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी, गरीब नवाज इस चंदू दीवान दा जो लड़की दा रिश्ता है गुरु हरगोबिंद जी दे नाल नहीं करना, क्योंकि इसने गुरु घर दी वास्ते कुबोल बोले हैं। ते जदों साहब जी ने मना कर दिता तां ए चंदू पापी दे मन विच आया कि ए तां मेरी बड़ी बेदबी कीती है इन्हां ने, गुरु अर्जन देव जी ने मेरा रिश्ता मोड़ दिता, इन्हां नूं अजे नहीं पता कि मैं किस पदवी ते हां ते मैं इन्हां दे नाल की कुछ कर सकदा। तां फिर चंदू दीवान ने छल करके चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी नूं कि आप लाहौर आओ। अंतर जामी गुरु अर्जन देव पातशाह तां सब कुछ जानदे सन, जिस वेले चलन लगे हरमंदर साहब तों कुछ प्यार वाले नाल तुर पए। बाबा बुढ़ा जी ने बेनती कीती, गरीब नवाज किथे तुरे हो, आख्या बाबा जी लाहौर किसे जरूरी काम नूं चले हैं, किसे जरूरी काम नूं चले हैं। तां बाबा बुढ़ा जी तां ब्रह्म ज्ञानी सन, जिस वेले नेत्र बंद करके वेख्या के किस काम नूं चले हैं साहिब जी, तां की तकिया लाहौर दे विचकार चंदू दीवान दी हवेली विच गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोहां ते बैठे हुए। पुब्बां निकलियां बाबे बुढ़े दियां, तां गुरु अर्जन देव जी ने कहा, बाबा जी ए राज राज ही रहन देना, खोलना नहीं। गरीब निवाज चले हो, एक वरा मात गंगा जी नूं तां दर्शन दे जाओ, जो गुरु अर्जन देव जी दी सुपत्नी सन।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

जिस वेले आख्या गुरु अर्जन देव ने, मियां मीर जितने तन पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिद्धक वाले, उतने ही सिख सिद्धक वाले होंगे। जे गुरु ने पाना नहीं मनिया तो सिखा ने फिर पाना क्या मनना है। ते फिर जिस वेले चंदू आया अजे भी मन नहीं भरिया तो साहब जी कहन लगे चंदू साडा मन करदा है असी स्नान करिए। तीन दिन हो गए हन चौकड़ा मार के बैठे हैं, साडे प्यार वाले जेडे नाल आए सन उन्हां नूं बुलाओ। ओ प्यार वाले गुरु अर्जन देव पातशाह नूं प्यार नाल इस वेले रावी दे किनारे ते लियाए। साहब जी कहन लगे हुण साडा गुरु नानक दे पास जाण दा समां आ गया, असी जपजी साहब पढ़ांगे ते जपजी साहब दा जिस वेले समाप्ति करांगे अपना शरीर अलोप कर लांगे रावी विच ते तुसी वापस हरमंदर साहब अमृतसर चले जाणा। ते ए सब नूं आखणा कि गुरु अर्जन जी ने उस अकाल पुरख दे पाणे विच रह के उसके हुक्म विच अपना सिर नवाया। जपजी साहब जिस वेले गुरु अर्जन देव जी ने आरंभी ते जिस वेले जपजी साहब का भोग पाया जिनी नाम त्याया गए मशक्कत काल नानक दे मुख उजले केती छट्टी नाल रावी विच अपना शरीर अलोप कर लिया। ते मानो अजे भी रावी दी लहरां विचों ए आवाज गुरु अर्जन देव दी आ रही।